टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है।